योषा गणेन वरदद्धि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषात् कलिम् विदधते कगुभश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे शमित्र शतपत्र गताली वर्गा हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्र

श्रद्भूषाम्बरहेतीनाम् सुषमावसमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवैकुण्ठविरक्ताय